मंजूर झल्ला बहुत फुकराह शायर था, उसने मिसालें दे दे के सस्सी से पूछा कि इश्क वालों को तो नींद नहीं आती, तुझे कैसे आ गई।